अपमान तोहे बने आवे। सतगुरु पातशाह महाराज जी दीन दुनिया नूं तारदे होए श्री गोइंदवाल साहब विखे महाराज गुरु अमरदास साहब जी सच्चे पातशाह महाराज कलयुग जीवां दा उद्धार कर रहे हन। धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी दी वडियाई अकबर बादशाह ने सुनना कीती है। अकबर बादशाह बड़ा हैरान होया है। धन सतगुरु पातशाह महाराज जी दी वडियाई सुन के प्रसन्न भी होया है, आश्चर्य भी होया है।

कि ओदे विच ही घुल मिल गया, एक मिक हो गया। मन दे विच बहुत भारी प्रसन्नता है कि महाराज जी दी जदों महिमा नूं सुणदा है ये गद गद हो जांदा है। इस प्रकार

भी उदम ने संगत जी सतगुरां दे सत्कार वास्ते हन। सो इत्थे भी जिहड़ी सिक्ख्या है उहदे विचों तुहानूं मेन गल इही प्रगट होवेगी कि आपां गुरु साहिब जी दा उहनां दीआं पोथियां दा गुटके साहिबानां दा सत्कार किवें करना है, बाणी दा सत्कार किवें करना। सो इह सारीआं ही सिक्ख्यावां मर्यादा आप जी ने इहदे विचों प्राप्त होणगीआं। सो आओ संगत जी हुण जो इह शुद्ध गुरबाणी पाठ पोथ समागम हन उस दी आरंभता हो रही। सिंह साहब ग्यानी लखबीर सिंह जी मुख ग्रंथी गुरु घर ते ग्यानी जैमल सिंह जी ग्यानी गुरविंदर सिंह जी दमदमी टकसा

0: मुकर नहीं कहना, मुकर दा अर्थ हुंदा मुकर जाना। जो मुकर कहने पोला एदा अर्थ हुंदा शीशा, जिदे च आपां मूंह वेखदे आ ओह वाला शीशा। सो पोह पंबद जो बास बस्त है मुकर माह जैसे छाई,
1: तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजह पाई, बाहर भीतर एको जानह

0: हाँ जी, ध्यान दे नाल इसे तरह जान नानक कोटन मैं किनहू। किनहू पाठ ही करना, किनहू नहीं कहना। जे किनहू कहांगे हाहे दे उपर टिप्पी लगेगी ते नानक पद ते जमक जरूर लाउणी। जान नानक कोटन मैं किनहू, गुरमुख होए पछाना।
1: तनासरी महला नावा, तेह जोगी काओ जुगत ना जाना।

0: सागर पाठ कस के करना सागर नहीं कहना। गुर सागर रतनी भर पूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे। चुगह पाठ पोला करना, चुगह नहीं कहना।
1: हाँ।

0: मन इसनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए।
1: अश्रम पाठ ऐड़े नू आश्रम उचारण नहीं करना, अर्थ वेले आश्रम ज्ञानी आपे उचारण करेगा, समझण वेले आश्रम ही अर्थ निकलेगा, पर अश्रम पाठ ऐड़े दे कन्ने तो बिना जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता है ध्यान नाल इदां ही करना।
0: कोई पाईऐ रे पुरख विधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुरमत मालक होए कर्म धर्म जुगता निमखना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़ै कही न लेखै जिस भेटिया सफल मूरत करै सदा कीरत गुर प्रसाद।

0: उच्चारण किया है सलाह साचे इथे जमक लाउणी मन सतगुर इथे विश्राम लाउणा ते मन पाठ कसके करना पुन दान दया मते मते पाठ पूला अगली पंक्ति दा सात सते ए दोवें पाठ कसके थोड़े जे करने हन फिर संग भावै सहज नावै बेणी ता संगम सात सते
1: आराध एकंकार साचा नित दे चढ़ा सवाया गात संग मीता।

की छाया बिरद पहे दिन पुन्या नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या बूढ़ी घर घालियो

प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जीव गुर शब्द विचारी नाह प्यारे निव निव भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रास मह रंग करे प्रभ साचे सि

0: मर्म ना जानना संत संगत राम हृदय बसाई रहा।
1: शेख नाग पाठ, शेख नाग पाठ ही करना, शेख नाग नहीं कहना, ससे दे चरना च बिंदी नहीं लाउनी, शेख नाग तेरो मर्म ना जानना।
0: हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

था रतन गाहक गुर साधु देखियो ताब रतन बिकानो लाखा मेरा मान गुप्त हीर हार राखा दीन दयाल मिला।

0: हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर, जन बिछड़िया तेरी मिलाना, धन धन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुरबाना, जात सरी महला चौथा, सतगुर साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागिबा, माया पुयांग ग्रस्यू है प्राणी, गुरबचनी बेस हर काढ़िबा।
1: काढ़िबा पाठ इकट्ठा ही है, काढ़िबा पाठ पर का ढिबा नहीं बोलना, काढ़िबा

0: कृपा प्रभ धारी गुर ज्ञान दियो मन समझार।
1: साध संगत जी ए हुक्मनामा साहब जी दो लैने सुन्नी नन्हे नाल ही उच्चारण करना नन्हा अखर औखा है इथे सुजी पढ़ी जांदे कई सुजी दे साध संगत जी ओ बहुत अशुद्ध शब्द बन जांदा है तेन सुन्नी दे फिर है बिन नावै ओ ए खाप खाप मुए करांजा बांजा ते करांजा ए ध्यान दे नाल उच्चारण करना।
0: रहाओ हर कीरत काल युग पद उत्तम हर पाईया सतगुर माजा हाओ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वडभागी सब किल बिख गए गवाजा सतगुर साहु पाया वड जाना हार किए बहुगुण सांझा जिनका कृपा करी जग जीवन हर उर धारियो मन माजा धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा जात सरी महला चौथा सत संगत साध पाई वडभा।

चौथा मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधसूदन मिल सत संग ओमाहा राम हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा सत गुरु मिलाहा गुण गाव है गुण बोल है बाणी हर गुण जप ओमाहा राम सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम न पुज है पुजाहा हर हर अतुल तोल अत भारी गुरमत जप ओमाहा राम सब कर्म धर्म

0: गुरप्रसाद नानक मन वसया दुख ना कबहू झूरो बुझ प्रभ कहो।
1: बुझ पाठ कस के करना, बुझ प्रभ कहो, बुझ नहीं कहना, बुझ प्रभ कहो, जिवे बुझना किसी चीज नूं। हांजी,
0: जैत सरी महला पंजवा लोहड़ी दड़ा साजन मेरा घर घर मंगल गावहो नीके घट घट तिसह बसेरा रहाओ। सुख आराधन दुख आराधन बिसर न काहू बेरा नाम जपत कोट सूर उजारा बिनसै भरम अंधेरा थान थनंद

गुरमत का जमाना आया, धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया। आपने साफ कह दिता जब प्रभु ने ही ऐसा जीवन बनाया है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, दोहां दी फिक्र करो, दोहे पासे दी फिक्र करो। तन भी उसका दिता होया, मन भी उसका दिता होया, चेतना उसे दी दिती हुई है। बाहर दी भी फिक्र करो, अंदर दी भी फिक्र करो। किरत ते कीर्ति दोहां ते गुरु नानक ने जोर दिता। तू किरत कर ताकि तन दी परवरिश चलती रहे, तू कीर्ति कर ताकि तेनु परम आनंद की प्राप्ति होवे, प्रभु की प्राप्ति होवे। तू किसी वक्त बार मुखी हो जा, फिर अंतर मुखी हो जा। जैसे श्वास बाहर जांदा है अंदर जांदा है, लेकिन गुरमत का भी ए संदेश, गुरु नानक देव जी दी ए गल कोई बहुत समझ दे च नहीं आई। किसी अवतारी पुरुष दी गल नूं पूर्ण तौर ते समझना अज भी कठिन है, अज भी कठिन है। तो मैं अर्ज करा, कुछ ऐसे लोग ने जो जीवन भर बार मुखी रहिंदे ने, अंदर दी फिक्र नहीं करदे। हुण विद्वान इंज कहिंदे ने, बाहर दी यात्रा हंकार दी यात्रा है। अगर अंदर नहीं मुड़दा पिया तो बाहर दी सारी यात्रा हंकार दी यात्रा है, अंदर दी यात्रा निरंकार दी यात्रा है। एक हंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। हंकारी मनुख, प्रबल हंकारी मनुख एक मासूम बच्चे कोलों हंकार नहीं चलता, क्योंकि वो समझदा ही नहीं, समझदा ही नहीं। एक मासूम दो तीन साल दे बच्चे दे सामने मनुख अपने हंकार नू प्रगट नहीं कर सकता, चलता ही नहीं, वो समझदा ही नहीं। पर एक शक्तिशाली है, ताकतवर है, उहदे सामने भी हंकार नहीं चलता, उथे नहीं चलता। एक मासूम बच्चा हंकार नू समझदा नहीं, एक शक्तिशाली हंकार नू समझदा है पर उथे चलदा नहीं। इस वास्ते अक्सर हंकारी मनुख अपने तो छोटियां नू लब्बेगा, छोटियां नू, उथे उसकी तृप्ति आउंदी है, या वध तो वध दूसरियां नू छोटा मन्नेगा, मन्नेगा, हर पक्ष तो छोटा समझेगा, मन्नेगा। उदी हंकार दी तृप्ति इसे दे, बाहर दी यात्रा हंकार दी यात्रा। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, मनुख दियां लोड़ां कोई बहुत ज्यादा नहीं ने, मनुख दा हंकार बहुत बड़ा प्रबल है। मनुख बहुत कुछ अपने हंकार दी खातर करदा है, कदी बगौर मुताला कर लेना। शेख सादी साहब कहिंदे ने, मेरियां भी अखां ने, संसार दियां भी अखां ने, 90% कम ते मैं लोकां दी अखां वास्ते करदा, अपनी अखां वास्ते ने। किवें मैं लोकां दी नजरां तो उच्चा उठ जावां ते लोकी सिर उच्चा करके मैनूं वेखण। हंकार ए चाहुंदा है नौ खंड पृथ्वी दे च मैं जाने आ जावां। महाराज कहिंदे नवां खंडां विच जाणीए, नाल चले सब कोय, सिर्फ एक शहर दे लोकी ही मैनू ना मन्नन, सिर्फ एक मुल्क दे लोकी ही मैनू ना जानदे होवन। सारा संसार जानदा होवे ते सारा संसार झुके ही। हंकार दी ए मंग है। ये गल वखरी है, हंकार कदी त्रिपत नहीं हो सकता।
ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਧਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਪਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਕਤ ਬਾਹੂ ਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਂ ਖੋ ਲੇਂਗੇ ਮੁਝ ਪਰ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਂ ਕਿਆ ਬਦਸ਼ੁਆਰੀ ਸੇ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਖਾਕ ਭਰ ਦੀ ਹੈ ਉਨਕੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਖਾਕ ਸਾਰੀ ਸੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ। ਦੀ ਸਾਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੋ ਮਨ ਰਾਲਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਆਗ ਦਾ ਪਰ ਹੈ ਪਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਬਖਤ ਹਮਚੂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਦ ਵਖਤ ਹਮ ਚੋ ਬਖੀਲ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਵੀ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਝ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਝੂਠ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ
परमात्मा तो दूर होंदा। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज रोकदे ने, उस्तत निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्वाना, पर जन नानक एओ खेल कठन है कि नहु गुरुमुख जाना। औखी खेड है कि मनुख निंदा भी ना करे ते उपमा भी ना करे, या मनुख घटा के गल करदा है या वधा के करदा है। अक्सर वैरी दी गल मनुख घटा के करदा है, अंदर ईरखा है, जलन है, ते मनुख घटा के गल करदा है, निंदा करदा है। अंदर कोई लालसा ते लोभ है ते मनुख खुशामद करदा है, वधा के गल करदा है। फुल नूं कंडा कह देना यह निंदा है, गल घटा के बयान की गई है। पर कंडे नूं फुल कह देना यह खुशामद है, गल वधा के बयान की गई है। इन्हां दोहां नाल मन मैला हुंदा है। फुल नूं भावें कंडा कहिए भावें कंडे नूं फुल कह दईए। मैं कई दफा हैरान होना, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह के पुरुष निरपक्ष आते ने, पक्षपाती नहीं आते। भाई गुरुदास जी ने एक लंबी चौड़ी पौड़ी विच एक वार्ता लिखी, उसका भी सूक्ष्म जिहा रूप मैं थोड़े सामने रखदे हां। दुर्योधन श्री कृष्ण जी दे पास गए, कहने लगे भगवान जितने तुसी सखा अर्जन दे हो मेरे भी हो, जितना संबंध थोड़ा उन्हां नाल है मेरे नाल भी है, साड़ी मदद करो तुसी, मैं थोड़े कोल आया फरियाद लेके। इस कथा नूं भाई गुरदास जी ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। श्री कृष्ण ने कहा एक मैं हां एक मेरी फौज है, तू दोहां दे च एक नो चुन सकदा है, या मेरी फौज लै लै तेरे पक्ष दे च लड़ेगी, या तू मैनू लै लै

0: ਤਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਨਾਉ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਯਾਤਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਨਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ? ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
1: ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਜ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਧੁਰੋ ਸੁਣੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਆਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਅਰੂਪ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਪਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਉਤਪਤੀ ਪਰਲੇ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਜਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਾਗਣਾ ਹੈ सुचेत होना है, सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर है, ते हाजिर हजूर है। रविदास कहिंदे ने ये हथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है वो तो इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल सी, कि मैं उसकी तलाश करता रहा, खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है, अपने आप नू जगाना। धन सोती फिर सद जागनता। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है, पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहते असी अधे जागे हो, पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देता है, निरंकार नहीं। भोजन का रस आउंदा है, भजन का नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु करदे आ किसनों रस आउंदा है? नहीं। पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आउंदा है। रसना अद्धी जागी हुई है, अद्धी सुती हुई। अखां अधियां जागियां ने, अधियां सुतियां हुई ने। संसार नूं वेख रही ने, निरंकार नूं नहीं। कन अधे जागे ने, अधे सुते ने। ये जगत नूं सुन रहे ने, गुरु नूं नहीं सुनते, ना परमात्मा नूं सुनते। शरीर संसार नूं स्पर्श कर रहा है, निरंकार नूं नहीं। जब कोई पूर्ण तौर पर जाग जाता है, सुचेत हो जाता है, तो रसना नूं भजन का भी रस आन लग पैंदा है। रसना गीदी बोलत राम। वो जैसे राम कहिंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहिंदा है, रस नाल भर जाता है। उन्हों जो कुछ दिखाई देता है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप नूं जगाना है। कीर्तन सुनिया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता, और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ये जागया नहीं। जब जाग जाता है, रसना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा विच बस जाता है। तो मैं उस तरह जद भी किसी महापुरश नो आत्म ज्ञान होया, वो इस गल ते हैरान होया, प्राप्त कुछ भी नहीं होया, जिड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया। लभिया कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं, जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नूं पता नहीं होंदा जो मिलिया होया, जिसनों असी भगत संत कह देने आ, उन्हों पता है। जो ते हाथ तो भी नेड़े है, वो ते हाजिर नाजर है। जद कदी इस तरह की उपलब्धि किसी नूं होंदी है, उसनों हैरानगी भी आती है कि मैं जगत नूं दसां। हकीकत यह है, असलियत यह है। और कदी कर्म कांड तो उच्चे उठने की कोशिश करो। पर कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखु नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहते ने कि राम नाम का हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते ने संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे, छुपाने की कोशिश करता है। पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों, तो उस दे अंदर एक दसण की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियों नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना। सारे पहाड़ों में सोना चांदी नहीं आता, तो समुद्र की सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आते। पर हर जीवन के अंदर प्रभु का नाम है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहते हैं मैं तलाश कर रहे हैं उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकते ने मैं बेचना चाहना। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन पटन कहते बाजार नो। आप कहते कोई बाजार ही नहीं है, किथे बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरियां दी मंडी च बिकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदन दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहिंदे ने हीरा कोल है वेचना चाहना, जो अगमी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगमी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना, हीरा मिले है बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं, पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर विच सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा। गली गली विच मंदिर है, सत्संग किधरे किधरे। गली गली विच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे। सुनिया पईयां ने मस्जिदां, खाली पे ने मंदिर, या किधरे एक कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल रही पे। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल दियां ने। रैराज साहब का पाठ टेप ला दो, असा दीवार का कीर्तन टेप ला दो, सुनो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा है, जिस सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म गया नहीं हो जाना? बस मनुख भी इस तरह का ही होगा, ये भी मैच कर दें, मशीन ही होगी। मशीन की तरह की, यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है। जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना। गुरु से ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर। इन दो शहरों के बाजार ने, उन्होंने नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन दो बाजारों में हीरिया की खरीदो फरोख्त का काम शुरू होया। भाई सिर्फ हीरे, रतन, पन्ने, लाल, मूंगे, नीलम, जवाहरात, पन्ने, जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार देखते अजकल चमड़ा ही बिकता है, या मोटा मांस बिकता है, जौहरिया की दुकाना खोल। जयपुर का जोड़ा जौहरी बाजार है, उत्थे हीरिया की खरीद फरोख्त होती है, उत्थे सिलसिला है। और इतना वड्डा ये देश है, हीरिया की मंडी, हीरिया का बाजार किधरे किधरे, हर थां ते नहीं, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लकड़ मंडी है, हर शहर विच हीरियां की मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ

नहीं पठन। आप कहते ने भ्रमण करद्या कदी कदाए मंडी मिल जाती है, पठन लग जाता है, बाजार लग जाता है। दुनिया का भ्रमण करदे करदे किसी शहर के सत्संग लग पैंदा है। तो कबीर कहते खुशी हो जाती है, मैं मंडी लग पी। पर आप कहते ने मेरी खुशी एकदम मायूसी दे बदल जाती है। क्यों? नहीं पटन नहीं पार खो, पटन ते लब पे है, बाजार ते लब पे है, पर उत्थे जिहड़े आउंदे ने पारखो नहीं ने हीरियां दे, समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदरां विच भगवान दी कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारियां विच गुरु दा कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां विच खुदा दी कोई समझ नहीं, खुदा दा कोई ज्ञान नहीं। कहिंदे ने पारखो ही कोई नहीं, ते जद पारखो कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है। जद पारखो ही नहीं है तो हीरा कच है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार विच एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, तो मैनू कह लगा गया नहीं जी ये रतन तुसी वेखे ने, नहीं विशेष रूप विच ये नौ आउंदे ने, नौ रतन, हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती नौ बनती। मैनू कह लगे ये तुसी देखे ने, मैं नहीं सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वक्त कढ़ो, मैं थानू दुकान पर लै जाना अपने सारे दिखा देना, मेरे को सारे ही हैं, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान पर पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैंने दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए। एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होता गया, पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहने हीरा लेके मैं बैठ गया, कोई पारखो ही नहीं है, किसी समझ ही नहीं है। नहीं पटन नहीं पारखो, मैं दोहरा दिया, आ रहे ने लोग मस्जिद खुदा की कोई समझ नहीं है, आ रहे ने लोग गुरुद्वारे गुरु का कोई बोध नहीं है, बड़ी भीड़ जा रही है मंदिरों में भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं। नहीं पठन नहीं पारखो। आप कहते ने कदी कदाई भ्रमण करद्या किसी बाजार में पारखो भी मिल जाते, समझ पता है सत्य की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है। चर्चा ही हो रही है सत्य दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर यह दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही। और जैसे जैसे मनुख दे अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके ये कि दया है, ये कि प्रेम है, ये दृष्टि कितनी समानता है, ये किन्ना क निर्वैर है, किन्ना क निर्भय है। इन्हां दैवी गुणा के पैमाने नाल ही नापना पैंदा है ये मनुख किन्ना क धार्मिक है, और किस तरह नाप हो गया। चानना सारे दा सारा सूरज दा है, गुण सारे दे सारे परमात्मा दे ने, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, गुण तो सारे उसदे ने। रोशनी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे हो रही है, पर रोशनी तो सारी सूरज दी है, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहने

जात नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो हो प्रभु, नानक ते कर हथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक ते कर हथ। परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दे पावन पवित्र हाजूरी अंदर संध्या वेले दे गुरमत दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। सतगुरु जी दे बख्शे हुए नेम दे अनुसार सो दर रह राज साहिब जी इस पवित्र बाणी दा पाठ आप जी नू गुरु सवारिया ने सरवण कराया है। आओ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणा दा ऊट आसरा लेके हजूर दे अमृत बोला नू आपां विचार सकीए। विचार दी प्रारंभता तो पहला आप जितने गुरु चरणा विच एकत्र होए हो बख्शो आशीष और गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी साडे बारमुखी जीवन दी अगवाई करदी है। एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी सानू आत्मक जीवन कमाण दी अंदर दी सोची बख्शदी है। बैठिया ही गुरु संगत विच विचार दे संबंध विच मन च एक ख्याल आया कि गुरु संगत नाल किस बचन दी सांझ पाई जाए। अरोस इस स्थान ते कीर्तन गुरु शब्द विचार और गुरु इतिहास आप जी सर्वन कर देखो। धन गुरु अर्जुन देव जी का एक अमोलक बचन, क्योंकि हजूर बाणी दे खजाने दे उचारण करता भी ने और धन गुरु अर्जुन देव महाराज गुरबाणी दे खजाने नू एक थां ते इकत्र करन वाले रहमतां दे दाता जी भी। जदो उन्हां दे अपने अमोलक बचन पढ़ने हैं ते धन गुरु अर्जुन देव 2000 तो वध शब्द अपनी रचना तो उचारण करदे ने, जिथे आप ओ बाणी दे उचारण करता उथे सारी बाणी नू एक थां ते संग्रह करके

अंदर झात मारो, तू कित्थे खलोते है। किसी नूं माड़ा कहण तों पहला अपने कर्म भी सोच लिया कर। असीं दूजे नूं चोर कहण दा सर्टिफिकेट मिंट च दे देईदा है, अपने बारे नहीं सोचदे। कर साहिब दी बाणी दा फरमान है, जे तैनूं बहुत अकल है किसी दे औगण वेखण तों पहला अपने गिरीवान च झात मार, तू कित्थे खड़े। शब्द पढ़ो तुहानूं याद है, फरीदा जे तू अकल लतीफा, पढ़ो फरीदा जे तू अकल लतीफ। लतीफ का अर्थ होंगे बहुत बुद्धिमान बंदा। फरीदा जे

अखो सतनाम श्री समा समाप्त हो गया है, पर पांच सत्त मिनट में तुहाडे लेने ध्यान नाल सुन ये जरूरी नोट करियो। आपां सारे ही स्कूलों में पढ़े हैं, तुहाडे बच्चे भी पढ़ते हैं। जिहड़ा बच्चा स्कूल तो घर आके होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट की हुंदा है? फेल। ताइयों आपां कहिंदे बेटे होमवर्क करो, ट्यूशन रखो, दो दो तीन तीन ट्यूशन रखियां सबजैक्ट ने। जिहड़ा बच्चा स्कूलों आके घर विच होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट फेल। ते याद रखियो आपां अरदास करके जे घर जाके आपां नाम ना जपिया रिजल्ट अपना भी फेल है, तुहाडा भी ते मेरा भी। जे आपां घर जाके वाहिगुरू ना ना जपिया रिजल्ट, तुहाडा भी फेल ते मेरा भी फेल। जे आपां गुरु की बाणी ना पढ़ी अपना रिजल्ट फेल होना है। आ हुण वेखियो तुसीं इन्हां महीनियां च रिजल्ट बच्चियां दे निकलदे, जिन्हें पूरा साल पढ़िया उहदे नंबर भी चंगे आउंदे। भाई जिन्हें पढ़ाई नहीं कीती उहदी कोई डिवीजन नहीं। यह गुरु का दर है। इत्थों आपां होमवर्क लैके जाणा है। होमवर्क किहने दित्ता है? श्री गुरु रामदास महाराज ने। की दित्ता है? कहिंदे गुर सतगुर का जो सिख खाए। पढ़ो गुर सतगुर का जो, नॉट गुर सिख, सिख जिन्हें सीखना शुरू कर दिता, जिन्हें गुरसिख बन दे रस्ते ते तुर पे, भावे अजे अमृत नहीं छकया, सिख है भाई वह सीखन लग पे। पढ़ो वो की करे फिर? की कला गुरुद्वारे मत्था टेके? नहीं। पढ़ो गुर सतगुर का जो सिख खाए सो पल के उठ हर। एदा मतलब तुहानू याद है, सो पल के उठ हर नाम ते आवे उदम करे पल के पर पाती।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हों सारिया ही दुखा का जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करते हैं सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखा दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसदे वृथा कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: आपन की कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचा कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: रब की जोत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को गर्भ है
0: सब कुछ किसका दिया दर्भ है
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: जे को होए वह दातार
0: इस दिन हार जाने का वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थामे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़ तरे
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तरे
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिल लाइये
0: गुर लिखे का लिखिया पाइये
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग दूत सह चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माहे
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आदि मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कहे सब कोई
0: मुख उजल हर दरगह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताके सतगुर हार है
1: चरण साध के धोए धोए पियो
0: हर प्रसाद को अपना जियो
1: साध की धूर कर हो इशनान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बेगन ते साधु राख
0: है हर गुण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मित्र को जी वालन हार
0: भूखे कौ दे बते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरब लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिस का उ करना है जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी
0: शक्ति उच निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन को की प्रतीत
0: जिस दिन आवे हर प्रभु चीत
1: भगत भगत सुनिया तिह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सकता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट सच आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सोजन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न
0: सब जाए नानका जिस हो सो प्रसन्न अष्टपदी
1: अवनासी ब्रह्म मन मह राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: तेसे परे नाही किछ होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाऊ
0: नानक मन ए नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जाका नेत्र फोर
0: उसका मंत्र न जाने होर
1: हंद रूप मंगल सद जाका
0: सर्व थोक सुनिए करता कह
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: तप मत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: त्याय त्याय भक्तां सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाई
0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विसार
0: रब बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे तिन माहे
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाउ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरियां सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत के बल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित भूजे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की असब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: इसकी सिफ्ट सो करना है हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योत स्वभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
1: सब कह रंग राज जन रहे
0: गुर कह वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जाके संगत रह संसार
1: जन का सेवक सो वट भागी
0: जन के संग एक लिव लागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सवधारी
0: आपे गुण कारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाके हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत के अंत समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजे ते समाहे समाना
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: आपका सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा
0: सेवक की रख निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रख
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम जप
1: अपने सेवक की आप पत रख
0: ताकि कदमित कोई न लख
1: रब के सेवक को न पहुंचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव प्रथे जात
1: मारे न रख हवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी
1: बार बार बार प्रभु जपी है
0: मते मन तन तरकी है
1: नाम रत्न जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न हिंद दृष्टाया
1: नाम तन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: ऊर्त बैठ शोभत नाम
0: कहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रबे अपने जन कीनी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाहे
0: रबे अपने से रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रबे अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण क्या एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मर मेरे दिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता
0: सोजन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान पसगली छाड़
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण का अष्टपदी
1: सतगुर से की करे प्रतपाल
0: सेवक अगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिर है
0: गुर बचनी हर नाम उचर
1: सतगुर सिख के बंधन काट है
0: गुर का सिख बकार के हट है
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार है
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है
1: गुर के गृह सेवक जो रह है
0: गुर की आज्ञा मन में सह है
1: आप उसको कर कष न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत हो इन्हें कामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: विश्व गुर का मन मान है
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ
0: नानक बार गुर को बल जा
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आज पहर बार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: एक है आप नहीं कश परम
1: सह सियान पले आन जाइय
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: वर्षत चरणगत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: बार ब्रह्म की दरगह गवे
1: सुनकर भजन करन आगाने
0: मन संतोखा तंपति आने
1: पूरा गुर अक्यो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भाव है तसलय मिलाए
1: के भाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: काऊ बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगम गोचर प्रभ निरबानी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुर अपने
0: नानक जिस पर साधा सा प्रभ जपने
1: यो हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणता
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम बहु दुख ते नासे
1: सब माही ठांड बरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: भव चुका निर्भव होए बसै
0: सगल व्याद मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: चित पाई चुके भ्रम गमन
0: सो नानक हर हर दा सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभु आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साध का संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चालै बिन भजन दिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी।
1: संत जना मिन करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अबरो पाप सब मीत बसारो,
0: शर्म कमल विद मैं उरतारो,
1: कर्म कान सो प्राप समर्थ,
0: दृढ़ कर गह नाम हर बथ,
1: केहु तन संजो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अनक उपावी रोग न जाए,
0: रोग मिटे हर अवखद लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: यदि स्थापते बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: और बिन से पूर्ण हो आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: यत कर जाए बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: मत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मर सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होई उदार,
0: हर हर सिमर पुराने आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मर वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सोत मीत कुटंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस स्थिर रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले आने,
0: भक्त बिना बहु डूबे सियाने,
1: भक्ति भगत करो मन मीत,
0: निर्मल हो तमारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल विख जाहि,
1: आप जपो अबरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार पूर सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: मन सदाए हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसे सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सुख दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: तो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको सलाह,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक के गुण गाओ अनंत,
0: मंत्र जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक आराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करिया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए अष्टपदी,
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कर कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरे शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: भजन करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महासुख होए,
0: हर रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपर परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सब त्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधेर निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सोए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुरु दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: जिच पुन्नी श्रद्धा सा पूरी,
0: गब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सोक्यम बिसरै जे काल न भान,
0: सोको बिसरै जे किया जाने,
1: सोक्यम बिसरै जे सब कुछ दिया,
0: सोको बिसरै जे जीवन जिया,
1: सोक्यम बिसरै जे अगन मह राख है,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सोक्यम बिसरै जे बिख ते काट है,
0: जनम जनम का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरा तत एह बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिय संसार,
0: भक्ति तन खुशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निद नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का हो नाश,
0: नानक नाम जपो गुण पास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों पेख दर सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दी जय कर माया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: प्रभ बख्शांत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आदि पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपे सो हो पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक परगास, श्लोक
1: सरगुण निर्गुण निरंकार,
0: सुन समाधि आप, अपन किया नानका आप ही फिर जाप, अष्टपदी
1: जब अकार एहो कछना दिष्टेता,
0: पापन तब कहते ਤੇਹੁ ਤਾਤ।
1: ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਤ,
0: ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਮਾਤ।
1: ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਤੇਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ,
0: ਤਬ ਹਰਕ ਸੋ ਕੋ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ।
1: ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਆਰ ਬ੍ਰਹਮ,
0: ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ।
1: ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀ ਜਾ,
0: ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ।
1: ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ,
0: ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਹੋ ਗਨੀ।
1: ਜਬ ਏਕ ਹੈ ਹਰ ਅਗਾਮ ਅਪਾਰ,
0: ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਕ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ।
1: ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ,
0: ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਹੋਗਤ ਠਾਏ।
1: ਜਬ ਆਪ ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ,
0: ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ।
1: ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ,
0: ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮੈ ਪਾਰ।
1: ਅਵਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ,
0: ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ।
1: ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
0: ਤਬ ਜਮਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ।
1: ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ,
0: ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ।
1: ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਦੇ,
0: ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ।
1: ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ,
0: ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰ ਜਾ।
1: ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ,
0: ਜੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ।
1: ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ,
0: ਜੈ ਕੌਣ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਅਪਮਾਨ।
1: ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼,
0: ਜੈ ਸ਼ਲ ਸ਼ਿਦਰ ਲਗਤ ਕਉ ਕੀਸ।
1: ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ,
0: ਜੈ ਕਿਸੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ।
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ,
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸਮਾਰ।
1: ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ,
0: ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸਤ ਭਾਈ।
1: ਜੈ ਸਰਵ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਵੀਨ,
0: ਤੈ ਵੇਦਕ ਤੇਵ ਕਹਾ ਕਉ ਚੀਨ।
1: ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪੁਰਧਾਰ ਹੈ,
0: ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
1: ਜੈ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੇਰਾ,
0: ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ।
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ,
0: ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਨ ਹੋਆ।
1: ਜੈ ਛਲ ਅਸ਼ੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ,
0: ਮੁਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ।
1: ਆਪ ਸੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ,
0: ਤੈ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼।
1: ਜੈ ਏਕ ਹੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ,
0: ਤੈ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਛ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ।
1: ਜੈ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ,
0: ਤੈ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣੈ ਹਾਰਾ।
1: ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ,
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਸੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ।
1: ਜੈ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ,
0: ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਥਾਰ।
1: ਆਪ ਗੁਣ ਤਹਿ ਭਈ ਕਹਾਵਤ,
0: ਓ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਵਿਸ਼ਾਵਤ।
1: ਕਾਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ,
0: ਮੈਂ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭਾਰ।
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ,
0: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਓ ਬਖਿਆਨ।
1: ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ,
0: ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕੈ।
1: ਜੈ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪ,
0: ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ।
1: ਤੂੰ ਬਾਪ ਆਪੇ ਧਨੀ,
0: ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੋਂ ਬਨੀ।
1: ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਅਨੰਦ ਜੋਜ,
0: ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਜ।
1: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ,
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ।
1: ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ,
0: ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁਲੈ। ਸਲੋਕ
1: ਜੀ ਜੰਤਰ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ, ਆਪੇ ਵਰਤਣ ਹਾਰ।
0: ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ।
1: ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰ,
0: ਆਪੇ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ।
1: ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ,
0: ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ।
1: ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ,
0: ਆਪਣ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ।
1: ਜਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭਜੀ ਆਪ ਬੁਝਾਏ,
0: ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ।
1: ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ,
0: ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ।
1: ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਂ ਕੈ ਹਾਥ,
0: ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ।
1: ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੈ,
0: ਸੋ ਮੂਹ ਆਜਿਸ ਮਨੋਂ ਬਿਸਾਰੈ।
1: ਇਸ ਸੱਚ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ,
0: ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ।
1: ਏਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਕੈ ਸਭ ਹਾਥ,
0: ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਸਾਥ।
1: ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ,
0: ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰ।
1: ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਇਆਲ,
0: ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ।
1: ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਜਾਣੈ ਆਪ,
0: ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹੋ ਵਿਆਪ।
1: ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ ਜੀ ਅਨੁਭਵ ਭਾਂਤ,
0: ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੈ ਧਿਆਤ।
1: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਈ ਮਿਲਾਏ,
0: ਭਗਤ ਕਰੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ।
1: ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮੰਨਿਆ,
0: ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ।
1: ਜਨ ਲਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਈ,
0: ਜਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪ੍ਰਥੀ ਜਾਏ।
1: ਸੇਵ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ,
0: ਹੁਕਮ ਬੋਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ।
1: ਇਸੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ,
0: ਜਾਕੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ।
1: ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ,
0: ਹਰ ਦਿਨ ਪੂਜਿਆ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ।
1: ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ,
0: ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ।
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ,
0: ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ।
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ,
0: ਦੁਰਲਭ ਦੇਖਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ,
0: ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸਵਾਓ।
1: ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖੋ ਨੇਰਾ,
0: ਮਟਿਆ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸੈ ਅੰਧੇਰਾ।
1: ਸੋ ਉਪਦੇਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ,
0: ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ।
1: ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੁਏ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ,
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰ।
1: ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਿਆ,
0: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤੇ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ।
1: ਮਨ ਤਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵ ਲਾਏ,
0: ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਾਉ ਜਾਏ।
1: ਸਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ,
0: ਦਰਗਹਿ ਨਿਧੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ।
1: ਏਕ ਟੇਕ ਰਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ,
0: ਨਾਨਕ ਪਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਜਾਹੇ।
1: ਇਸੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ,
0: ਉਬਰੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਧਿਆਏ।
1: ਨਿਰ ਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ,
0: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ।
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ,
0: ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ।
1: ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਹੰਕਾਰ,
0: ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ।
1: ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾੜਾ ਗੁਰਸੂਰਾ,
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ।
1: ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂਕੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ,
0: ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ।
1: ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂਕੀ ਅਨੂਪ,
0: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ।
1: ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ,
0: ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ।
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਹੋਤ ਨਿਹਾਲ,
0: ਤਾਕੇ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲ।
1: ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ,
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸਲੋਕ
1: ਗਿਆਨ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ।
0: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, नानक मन परगास अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभु डीठा
0: ना प्रभु का लागा मीठा
1: सगल समिग्री एक घट माहे
0: अनक रंग ना ना दृष्टा है
1: नौ नदी अमृत प्रभु का नाम
0: यही मैं इसका विश्राम
1: सुन समाद अनहद तहनाद
0: कह न जाइए चरज विस्माद
1: तिन देखिया जिस आप दिखाए
0: नानक ते दर सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: घट घट प्याप रहा भगवंत
1: धर्म माहे आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: मन दिन पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी दा संतर माहे
0: चार कुंट दा दिसै समाहे
1: इसते भिन्न नही को ठाऊं
0: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद पुराण सिमरत मैं देख
0: सस्य सुर न खतरे मैं एक
1: वाणी प्रभु की सबको बोले
0: आप डोल न कब हूं डोले
1: सर्व कला कर खेल है खेल
0: बोल न पाइये गुण अमोल
1: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत
0: धार रहो स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद भ्रम का नास
0: नानक तिन मैं एहो विसास
1: संत जना का देखन सब ब्रह्म
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी एह रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख मान
0: करन करावन हार प्रभु जाने
1: अंतर बसे बाहर की होई
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: जिस प्रभु ते सगली उत्पत
1: इस भावै ता करे विसार
0: इस भावै ता एकंकार
1: अन कला लखी न जाए
0: जिस भावै तिस लए मिलाए
1: कवन निकट कवन कही है दूर
0: आपे आप प्रभुर
1: अंतर्गत जिस आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूते आप वरतारा
0: सर्व नैन आप खनहारा
1: सगल समग्री जा का तना
0: अपन जस आप ही सना
1: आवन जाने खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया
1: सब के मत अलिप्त हो रहा
0: जो किस कहना सो आपे कहे
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जापा वैता लय समाए
1: इससे होई सुना ही बुरा
0: उरे कहो किने कश करा
1: आप ला करतूत आत्मी की
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साज धारी सब साच
0: बोत बोते अपन संगराज
1: ताकी गर्मित कही ना जाए
0: दूसर होए ता सो जी पाए
1: इसका किया सब प्रवान
0: गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप मलाए लए प्रभु सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: धन धन धन जन आया
0: जिस प्रसाद सब जगत तराया
1: जानिया मन का यह सुआ
0: जन के संग चित आवे नाम
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार
0: नाम

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: वार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोबिंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्त नित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरह
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: संत कमाप तो होत उदार
0: आप त्रैलोक का निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजै
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिनके साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: काल जंजाल विकास के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सो होत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रकट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: गौर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन के मुख भनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: मोहित भगत के मन बसराम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊच ताकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुख मनी
1: सबते ऊच ताकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुख मनी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
3: Ek Oankar Satgur Prasad Asa Mahalla Chautha Shant

पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हम हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

प्रकृत फिराहे। हौ मैं दीर्घ रोग है दारू भी इसमें है, कृपा कर जे अपनी तंगुर।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझ ने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिल गए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: काल पूर्वर्ती अकल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों बेदार जे को तो कबरती हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए फैबज खुम चढ़ाइए सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: धुआ पूरा तपे का सतगिर धुआ हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त कर नीच।

शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया पर भो मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जत कसाई नील वस्त्र पैर होवे

कोठे मंडप माणिया लाए बैठे कर पसारिया चीज करन मन भावदे हर बुजर नाही हारिया कर फरमाइश खाया वे

पौड़िया पिहकरणा की कलप हित धारिय देख किता अपना तर्क चिप की सारिय जो आ

होड़ी चक्कर लगे चक्रे चले खसमे पाए हुरमत तिसनो अगलियो वजो पी दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर कैर्थ अंतर पाए वजह गवाय अगला मोहे मोहे पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस गहिया शाबाश नानक हुकम ना चले नाल खसम।

आपे पांडे साजी नापे पूरुंडे इकनी दुद्ध समाई एक चुले रैं चढ़े इकने हाली पैस वाली कुपुर्यान खड़े तिना सुवारे नानी।

चंद नम सूरज सूरज नम चंद्र चंद्र नम राज राजे नम इंद्र इंद्र नम अंधकार नम तेज तेजे नम बृंद बृंदे नम बीज बीज नम राज संताम संसात रूपे नमो परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो

जती के सूर सुरार्दन सुद सुधाधक संत समूह अनेक मति के सार ही देश को देख रहे हो मात को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दसान को बाजत टोल मृदांग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत पेख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पवन आहार जति जत हर सब सब चार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत

सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दिया सतरन को पल मोह बद किया घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कूंचर अस्थूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी

जुवे हारिया जिया हो निर्मल बारह निर्मल बारह ता निर्मल जिया हो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोय पहुचै नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन खटिया भले सिवन जारे कै नानक जन मन निर्मल।

तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सिस्यो लिवलाए कहे नानक आप करता पे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ता सार न जानी तत्ता सार न जानी गुर बाजो तत्ता सार न जानी तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी गुर

हर गांव मंगल नित सखी है, सोग दुख ना व्या पाए। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना प्यार जा पाया, नाथ बाणी गुर शब्द जानिया।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

वर्णन सके महिमा जो तिहारी, हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी। आप ले ओ तुम कथा सुधारी, कहाँ लगे एहो कीट बखाने।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उंज ते शरीर दा हर अंग अपने आप दे कारामद है, महान है और उसकी महिमा वर्णन नहीं कीती जा सकती। हर अंग महान है लेकिन फिर भी किसी जगह पे पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई दे दे। रास्ते का दिखाई देना बड़ा लाजमी है, फिर चलन वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है चलन की तौफीक नहीं, रस्ता देखे होया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा चलन की तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देंदा। ऐसा मनुख ऐसा त्यास कीता जांदा है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदिया पहुंच जाएगा। रह गई गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी, परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है जानना है इह ते रस्ते दा वेखणा है। इस तरह दे जानकार जानन वाले रस्ते नूं समझण वाले इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहिंदे ने खुदा ला शरीक है ला मकान है, उहदा कोई थां टिकाणा नहीं, उहदा कोई शरीक नहीं, वह ला महदूद है, उहदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत विच बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहिंदे ने बेअंत है, जात पात तो न्यारा है, रंग रूप तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, उदी कोई सीमा नहीं, बेअंत है, बेअंत है। सिख जगत देश भी करीबन करीबन ज्ञानी यही कुछ कहते हैं, बेअंत है, बेअंत है, लेकिन मनुख दा मन बेअंत तो प्रभावित नहीं। असीम है, असीम है, लेकिन मन उस असीम तो प्रभावित नहीं है। कारण सिर्फ रास्ता दिखाई देता है, मंजिल नहीं है। जैसे किसी थान पे सी पहुंचना है कि किसी ने रास्ता दस देता या रास्ता दस रहा नाल है तो रास्ता तो दिखाई दे रहा है, जिथे असी पहुंचना है उते नहीं। जगत विच परमात्मा दे रस्ते दे भी बड़े झगड़े ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वख वख मंत्रां दा रटन ये रस्ता है, राम जपना, अल्लाह हो जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहेगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, ये सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उते चलन दे अपने अपने ढंग ने, कोई दौड़दा है, कोई आहिस्ता चलदा है, कोई बहुत आहिस्ता चलदा है। तो चलन दे और रस्ते दे इतने झगड़े ने, इतने झगड़े ने, अक्सर मनुख रस्तियां च ही रह जांदा है। क्योंकि गल रस्ते दी मंजिल दी ते है नहीं। कई दफा चल चल के मनुख जब थकदा है, टुटदा है ते पहुंचदा नहीं, रस्ते बदलदा भी है, ये भी महसूस करते हैं। क्योंकि मजहब बदलने दे, बदलना, धर्म बदल लेना,
शायद उत्थे कोई गल हो गए। जिंदगी कईयां दी रस्तियां च लंघ जाती है, लेकिन बेशतर दुनिया वो है जिन्हां नूं रस्ते की भी समझ नहीं, ज्ञान नहीं, इस पासे का शौक नहीं है। अगर रस्ते की समझ आ गई है तो मंजिल तो प्रभावित नहीं है, नमाज पढ़ रहे ने खुदा तो प्रभावित नहीं है। इन्नी महज कर दें, बाणी पढ़ रहे ने गुरु तो परमात्मा तो प्रभावित नहीं है, पूजा पाठ कर रहे ने भगवान तो प्रभावित नहीं है। फिर क्यों कर रहे ने? भगवान कोलों कुछ मंगते हैं, खुदा कोलों कुछ मंगते हैं, वो जिहड़ी मंग है उस तो प्रभावित ने, जो देण वाला है दाता उस तो प्रभावित नहीं है। और मंग नाल कई दफा इस तरह जुड़ जाते हैं, इस तरह जुड़ जाते हैं, देण वाला तो कभी चेता ही नहीं आता। दात प्यारी विसरिया दातारा, कभी चेता ही नहीं आता, उसकी तो कभी याद ही नहीं आती। उसकी दात प्रभावित कर रही है, दाता प्रभावित नहीं कर रहा है। क्योंकि दात प्रभावित कर रही है, दात होर मिले होर मिले तो कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई बाणी पढ़ रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद जा रहा है, सब दात नाल जुड़े हुए ने। दात दी मंग, दाते दी कोई खबर नहीं, मंजिल दी कोई समझ नहीं, रस्तियां दी थोड़ी बहुत समझ है। इस रस्ते ते चल के शायद इस दात दी प्राप्ति हो जाए। इस मंत्र दे जप नाल, इस तरह दे पूजा पाठ नाल, इस तरह दी साधना नाल शायद ऐ चीज मिल जाए, ऐ वस्तु मिल जाए। तो सारी दुनिया विच इस तरीके दे नाल धार्मिक लोग करीबन करीबन 99% ओ ने जो दात लई सब कुछ ए कर रहे ने, दाते लई नहीं, दाते तो प्रभावित नहीं। जब दात तो प्रभावित नहीं ते दात लई कुछ कर रहे ने, तो गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने ते व्यापारी ने, कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। इन्हां नमाजियां देच, इन्हां पूजा पाठ करन वालियां देच, इन्हां बाणी दा जप करन वालियां देच, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां जान वालियां साहिब कहिंदे कोई करोड़ां च इक अद सेवक हुंदा जो दाते तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित है, खुदा तो प्रभावित है, ईश्वर तो प्रभावित है। हुण सतगुरु करोड़ां च इक कह रहे हैं। चलो ये मैं गिनती भी थोड़े सामने रखते हैं जो अनुभवी पुरुषां ने की है। किसी मस्जिद विच 10,000 दे करीब नमाजी होन, किसी चर्च विच 10,000 मनुख बैठे उन प्रेर करन वास्ते, किसी मंदिर विच 10,000 दा किधरे इकट्ठ होवे पूजा करन लई, दर्शन करन लई, ते किसी गुरुद्वारे च किधरे 10,000 दे करीब सत्संगी बैठे होवन, उन्हां च इक जग्यासू हुंदा। जाग पिया, थोड़ी समझ आ गई, पता चल गया, परमात्मा का पता चल गया, समझ आ गई है। मैं दात तो प्रभावित सी, दाते तो प्रभावित नहीं, दाते दे प्रति जाग पिया, दाते तो प्रभावित हो गया, सिर्फ प्रभावित होया, सिर्फ प्रभावित होया। पहले दिन वाले कहे शब्द में जरा दोहरा ही दें, जिस तो मेरा मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता, मन जिसकी मंग नहीं करता, मन उसनों याद भी नहीं करता।
मन जिसनों याद नहीं करता, ये शरीर उदी प्राप्ति लई कोई उद्यम नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता, कोई समा नहीं कढ़ता, कोई संघर्ष नहीं करता। इस तरह 10,000 इकट्ठ दे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे एक जगह सो आंदा, फिर 10,000 दे करीब जगह सो होवन जो थोड़े जाग पे ने दाते तो प्रभावित ने, दात तो नहीं, दात ते है जो कुछ है, पता चल गया परिवार एक दात है, बच्चे एक दात ने, धन संपदा एक दात है, जीवन एक दात, सूरज दी रोशनी सानू दान दिच मिल रही है, वगदी हुई पवन दान है, बहुत कुछ जिस दासी कोई मुल नहीं चुकाया ते मिल जाता है, दाता वो दे रहे हैं। लेकिन 10,000 सतसंगियां विचों कोई एक कद दाते तो प्रभावित हो गया, एक उसनु जग्यासु कहिंदे जाग पिया, निरा सुत्ता होया नहीं, जाग पिया, निरे एवें गुरुद्वारे नहीं आया, कुछ समझ है, सिर्फ एवें बाणी नहीं पढ़ रहा, कुछ समझ है, सिर्फ एवें ही नहीं जप कर रहा, कुछ समझ है, सिर्फ एवें ही नहीं हाथ विच गुटका लई बैठा, कुछ समझ है, उस जगह आसो। ये आंकड़े बहुत गहरे अनुभवी पुरुषां ने इकट्ठे किए ने, ते मैं थोड़े सामने जो उन्होंने मैं पढ़े है थोड़ी जी समझ आई थोड़े सामने रख रहे हैं। 10,000 निवाजी किसी मस्जिद दे चोवन, 10,000 पूजा पाठ करने वाले किसी मंदिर दे चोवन, 10,000 दे करीब प्रेर करने वाले किसी चर्च दे च बैठे होवन, 10,000 गुरसिख सत्संगी किसी गुरुद्वारे च बैठे होवन, एक जगह सो आंदा, बहुते नहीं आंदे, एक आंदा जो जाग पे है, समझ आ गई, मेरी दात लई ओ हुण गुरुद्वारे नहीं आउंदा, दाते लई आउंदा, श्री दात वास्ते बाणी नहीं पढ़दा, हुण दाते वास्ते पढ़दा, समझ आ गई। इस तरह 10,000 दे करीब अवन ते कोई एक जग्यासु आउंदा, फिर गिनती कर दिन 10,000 जग्यासु होवन एक साधु होंदा, एक साधु होंदा। जैसे जैसे पहाड़ दे ऊपर चढ़िए ना तो जगह छोटी होंदी जा रही, थल्ले बहुत ज्यादा, जितने जग्यासु ने उतने साधु नहीं ने। 10,000 जग्यासु होवन उन्हां च कोई एक अद साधु आउंदा है जो बड़ा तेजी नाल चल पिया, मेरा परमात्मा तो प्रभावित ही नहीं होया, परमात्मा की प्राप्ति लई पूरा समा कढ़दा है, पूरा संघर्ष करदा है, पूरी मेहनत करदा है, पूरा जप तप करदा है, मेरा प्रभावित ही नहीं होया, मेरी समझ ही नहीं आई। जिस दी समझ आई है उदी प्राप्ति लई यतन करन लग पिया, मेहनत करन लग पिया, बड़ी मेहनत करन लग पिया, इनू साधु कहिंदे। हुण होर सुन लो, 10,000 दे करीब साधु होवन, इन्हां च एक संत आउंदा है जो पहुंच गया, एक इस तरह एक करोड़ां च कोई एक कद बनेगा। कोटन में नानक को नारायण जय जी, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, करोड़ां च कोई एक। ऐसा क्यों है, मैं दोहरावा, बड़ा बारीक मजमून है परमात्मा, और इस वास्ते बड़ी बारीक अकल चाहिए है।
ਅਕਲ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਆਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਨੇ। ਅਕਲ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਪਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ

प्यार एक रूप देख नहीं है, ये कई रूप ने। संबंध प्यार नाल जुड़दा है, ज्ञान नाल नहीं। किसी की मैनू समझ भी आ जाए किसी मनुख की यह कौन है, संबंध ते नहीं जुड़दा, संबंध ते प्यार नाल जुड़दा। मैनू पता चल जाए फलाना, उहदे नाम धाम का भी पता चल जाए, उहदी शख्सियत का भी पता चल जाए, इहदे नाल कोई संबंध ते नहीं जुड़दा। संबंध प्रेम जोड़दा, प्रेम नेड़े लै जांदा है, ज्ञान नेड़े नहीं लै जांदा। देखना ते दूरों भी हो सकदा, दूरों असी चन्न नूं वेख लैंदे आ, देखण दा की है, सूरज नूं वेख लैंदे आ, ग्रह नक्षत्रां नूं वेख लैंदे आ, बड़ी दूर दी चीज़ नूं वेख लैंदे आ। पहुंचण वास्ते ते कोई साधना करनी पएगी ना, उत्थे तक पहुंचण वास्ते ते कुछ यतन करना पएगा ना। प्रेम ही नेड़े लै जांदा किसे दे, ज्ञान नेड़े नहीं लै जांदा। अगले की कितनी भी समझ पै जाए ये फलाना है, फलाना है, उदी सारी जात पात नाम दाम कम सब कुछ का पता चल जाए, जानकारी मिल गई है, दूरी बनी रहती है, पता तो चल गया मनुख कौन है की है, लेकिन दूरी बनी हुई है क्योंकि प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार नेड़े लै जांदा है, ज्ञानी उरार ही रह जांदे ने। इतनी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े ज्ञानी इस्लामी जगत दे, हिंदू जगत दे, सिख जगत दे, बड़ी सिर खपाई करते रह जाते हैं, यह भी मैं अर्ज करते हैं। ज्ञान की लोड़ है वेख सके रस्ता, पर वेखण नाल सिर्फ पता चले, संबंध ते कोई नहीं जुड़े, रिश्ता ते नहीं जुड़े, वो ते प्यार नाल जुड़दा है। हुण प्यार दे कुछ रूप मन्ने गए ने, प्यार नूं स्नेह आख्या गया, प्यार नूं प्रेम आख्या गया, प्यार नूं श्रद्धा आख्या गया, प्यार नूं भगती आख्या गया। शिखर दा प्यार जो बुलंदियां नूं छूंदा है उसनूं भगती कहिंदे ने, निवाण दा प्यार जिसनूं स्नेह कहिंदे ने, इह स्नेह अपने तो छोटियां नाल आउंदा है, बच्चियां नाल हो सकदा। बिना स्नेह तो ते बच्चियां नाल भी संबंध नहीं जुड़ेगा। प्यार दी यह धारा निमाण दी तरफ जा रही है। स्नेह पशुआं दे च भी आउंदा है, कीड़े मकोड़ियां च भी आउंदा है, पंछियां च भी आउंदा है, बल्कि स्नेह किसे किसे पशु च मनुख नालों भी ज्यादा आउंदा है। जैसे बंदर ने, बंदरी दा बच्चा मर भी जाए मुर्दा बच्चे नूं भी सीने नाल लाई रखदी है, सुटदी नहीं, छोड़दी नहीं। ऐसा मैं आगरे दे च, हरिद्वार दे च, कानपुर दे च देख के दंग रह गया, बनारस दे च देख के दंग रह गया, है ते बच्चा मुर्दा सुटदी नहीं पई, अद्धा गल गया, लीरां लीरां हो गया, नहीं सुटदी पई। बंदरी दे अंदर यह स्नेह बहुत बड़ा प्रबल है, मनुख नालों कई गुणा ज्यादा, मनुखी मां नालों कई गुणा ज्यादा। इसी स्नेह नूं मोह कह देंदे ने, घिरणा नहीं इस मोह नाल। धन गुरु अमरदास जी महाराज ते कहंदे ने, कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। हे प्रभु, जे किधरे तू मोह दे च मिठास ना पांदा, बच्चे ते पलना ही नहीं सन, ना पशुआं दे ना मनुखां दे, रोंदा रह जाना सी बच्चा, किसने दुध पिलाना सी, तड़प के बिलख बिलख के मर जाने सन बच्चे, किन्ना पशुआं ने संभाल करनी सी। सारा दिन दाणा लभदी है चिड़ी, आके बच्चे दे मुंह च पांदी, ऐसा सब कुछ स्नेह करा रहे हैं उहदे कोल। भगत नामदेव जी महाराज ते कहिंदे ने, मंदिर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाड़ी अले, पंच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अरे। भावे चरवाहा गुआला गऊं नूं बहुत दूर ले गया चराण वास्ते,

0: ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਤੇ ਚ ਖਾਂਦੀ ਘਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੜੇ ਉੜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਖੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਾਦ। ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਨਵੀਂ ਬਰਫ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੂੰਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਫ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦਾ ਨੇ। ਉੜੇ ਉੜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ, ਸੈਕੜੇ ਕੋ ਇੱਕ ਕੋ ਦੋ ਮੀਲ ਦਾ ਬਾਹ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੜੇ ਉੜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ? ਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਆ ਕੂੰਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ? ਇਤਨੀ ਤੋਫੀਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੂੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਲਦੀ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ ਜੈਸੇ ਬਛਰੇ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਰੇ। ਕੂੰਜ ਜਦ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਚੁਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਤਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਦੇਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੈਸੇ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਧਿਆਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਹ, ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਤਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਕੂੰਜ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ, ਇਤਨਾ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, लगता है वो भी याद कर रहे हैं, वो तो कहते हैं इतने ऐसा कहते हैं। लेकिन किसी भी जे बार बार याद आवे, हुण विज्ञान इस गल नूं तस्लीम करता है, अगला भी याद कर रहा है। सूफी ते इंज कहते हैं, वह दूजे ढंग नाल कहते हैं, वो कहते अज खुदा की बड़ी याद आ रही है, लगता है खुदा अज सानू याद कर रहा है। लेकिन भाई गुरदास जी कहने, तू एक दफा याद कर, परमात्मा तेनू करोड़ा दफा याद करेगा, तेरी याद इतनी अंदौलत कर देगी। तू सिर्फ एक कदम चल, परमात्मा करोड़ा कदम चलेगा। अगर करोड़ा कदम परमात्मा चले ना, मिलाप हो ही नहीं सकता, तेरे एक कदम नाल नहीं हो सकता, एक एक कदम नाले वाट नहीं तय होएगी, तेरे सिमरन नाले वाट नहीं तय होने लगी। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत। तू सिर्फ एक कदम चल, करोड़ा कदम परमात्मा चलेगा, गुरु चलेगा, ये फासला तय होवेगा, उंज हो ही नहीं सकता। दिल की गहराई चो एक दफा भी याद करना बड़ा औखा है। कलगीधर पातशाह कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, एक दफा की याद ही मिला दें, एक चित जाए एक छिन दे आयो, एक छिन एक सैकेंड, काल फास के बीच ना, काल तो बच जाता है, अकाल नाल जुड़ जाता है, परमात्मा नाल जुड़ जाता। याद तो एक दफा ही करना होता है, पर याद मनुख किसनू करेगा इतनी गहराई नाल, जिस तो प्रभावित होगा। मां बच्चे तो प्रभावित है, यह सिमरती निवाण की तरफ चली जाती है, यह प्यार निवाण की तरफ चला जाता, इनू स्नेह कहते हैं, इनू मोह कहते हैं। मैं फिर अर्ज करा, गुरमत इस दी निंदा नहीं करती, मोह क्यों है, कुर्बान कीता तिसे विटों, जिन मोह मीठा लाया। अगर मोह विच मिठास ना आउंदी, ना पशुआं दे बच्चे पलने सन, ना मनुखां दे, सारा संसार सुन हो जाना सी, कुछ भी नहीं होना सी। लेकिन सिर्फ मोह दे तल ते ही रह गए, अगे गया ही नहीं, ये मनुख पशुआं तो उच्चा नहीं उठ सकया। बस इन्नी गल, इन्हें बुलंदियां नहीं छोया। स्नेह विच एक छोटा होंदा है, एक वड्डा होंदा है, बच्चा हमेशा ही छोटा, मासूम है, कमजोर है, मजबूर है, स्नेह है उसका। स्नेह विच देना ही देना होंदा है, समा देना है, मान है, अपने अस्त्रां दा दुध देना है, खून देना है, अपना अपना मास देना है, एक तरीके ना अपनी शक्ति देनी है, समा देना है, वक्त देना है, बच्चे नूं ते देना ही देना है, देना ही देना है। ये देन दी भावना स्नेह पैदा कर दी है, स्नेह ना होवे ते देन दी भावना नहीं पैदा होंदी, ये भी मैं अर्ज कर दें। स्नेह की अपनी एक सीमा भी आती है, अपने बच्चे नाल आता, स्नेह दूजे नाल नहीं आता। भाई गुरदास जी तो साफ कहते हैं, पिता का प्यार ना पड़ोसी पे पाई है, साफ कह देता है। ठीक है, पड़ोसी ने भी बच्चे ने चुक लिया, प्यार प्या करता है, पर प्यो वर्गा नहीं हो सकता, मां वर्गा नहीं हो सकता। भाई गुरदास ऐसा स्पष्ट कर देना, मोह स्नेह बड़ा सीमित होता है, और इस सीमित मोह करके हो सकता है अपने बच्चे दे औगुण भी चंगे लगन, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी चंगे ना लगन, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस नाल स्नेह नहीं है। स्नेह दृष्टि नूं बदल देता है, स्नेह करके अपने बच्चे च खूबियां ही खूबियां दिखाई देंदियां। चलो ये एक निका जहा मैं थोनों उदाहरण भी सरवण करा दें। अकबर की अदकड़ उम्र हो गई सी, घर औलाद नहीं सी, कि ख्वाजा मुईदीन चिश्ती की दरगाह ते भी गया, हजरत निजामुद्दीन दे चेले भी इसने कट्टे, होर भी पीरां फकीरां दियां मजारां ते गया। अखीर विच शायद जिहड़े इतिहास नूं पढ़दे ने सुणदे ने उन्हां नूं पता है, फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज के दर्शन करन नंगे पैरी गोविंदवाल साहब गए। ख्वाहिश संतान दी, बच्चे दी, तखत दा वली वारस होवे कोई, हिंदुस्तान दा मैं बादशाह, मेरी औलाद कोई नहीं। धन गुरु अमरदास जी महाराज दे अस्थान गोविंदवाल साहब दे जद पहुंचे है, क्योंकि भीड़ भाड़ नाल सी, सिपाही नाल सन, लाओ लश्कर नाल सी, हिफाजत वास्ते चौबदार ने धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं दस दिता, मुगले आजम अकबर आए ने। सतगुरु कहन लगे असी एक मर्यादा बनाई हुई है ऊंच नीच नूं खत्म करन वास्ते, वड्डे छोटे नूं खत्म करन वास्ते, पहले पंगत फिर संगत। साढ़े दर्शन बाद पहले पंगत च बैठे, उन्हां दिन रस्ते च कोई ढाबे होटल नहीं आउंदे सन, दूर दूर लोग पैदल संगतां जांदियां सन, कोई किसे पिंड च वा रहा है, कोई किसे शहर च वा रहा है, पैदल लंबी वाट तय करके आना, तो भुख प्यास ते होंदी सी। सतगुरु ने लंगर का इंतजाम कर रखिया सी, हर वक्त लंगर चलता सी, पहले पंगत पाछे संगत। चौबदार ने यह हुक्म सतगुरु का मुगल आजम नूं भी सुना दिता, पहले पंगत पाछे संगत, बैठो पंगत विच, मुवात दवो, लंगर छको, फिर सतगुरां दे दर्शन होणगे। पंगत च बैठा है और अकबर का स्वयं का अनुभव है, कहिंदे दस्तरखान ते मैं अज तक 36 प्रकार के भोजन खाधे ने, ये स्वाद नहीं आया जो इत्थे रुखे सुखे लंगर विच मैनू आ गया। इन्ना रस, भावना ने रस बना दिता। लंगर अक्सर भावक मनुख भावना वाले बनांदे, भावना प्रभावित कर दी है, यह भी मैरज कर दे, भावना भोजन नूं प्रभावित कर दी है, भावना पानी नूं प्रभावित कर दी है, भावना रेत दे जरिया नूं प्रभावित कर दी है, भावना माहौल हवा नूं प्रभावित कर दी है। जागीर लिख के देन लग पिया, इतने पिंड मैं दे देना, इतने पिंडां दी जमीन दे देना, ये लंगर खुले ढंग नाल चले। सतगुरु देव जी महाराज कहन लगे नहीं, यह संगतां दी दसां नवां दी किरत नाल चलदा है, शहनशाहां दी जंगीर नाल नहीं। जब दर्शन कीते निहाल होया, खैर इसदे घर औलाद होई, शाहजादे दा जन्म होया आगरे दी गल, नाम सलीम रखिया, बाद विच यही जहांगीर बनिया। ममता कई दिनों की जो अंदर रुकी हुई सी, मोह जो कई दिन का अंदर रुकया होया सी, हड़ बन के बाहर आया। अपने राज काड़ दे चे भी समा कढ़ लेंदा सी सलीम नूं खिडाण वास्ते, उहदे नाल गल्लां बातां करन वास्ते। हालांकि गल्लां बातां सिर्फ प्यो नहीं करनियां होंदियां, मां नहीं करनी, बच्चा ते कर नहीं सकदा, लेकिन फिर भी प्यो बोलदा, फिर भी मां बोलदी, भावें अजे बच्चा समझदा नहीं पिया। मोह मजबूर करता है, सनेह मजबूर करता है। अकबर दिन दे कई कई दफा समा कढ़दा है, खिडांदा है बच्चे नूं, प्यार करता है। सवेर दा वक्त सी, सलीम गोद दे च है, अकबर बड़ा खुश, नमाज पढ़ के आया, सलीम नूं चुक लिया। गोली एक नौकराणी दासी पोचा दे रही सी फरश ते। अकबर उस गोली नू कहंदा है, खादिमा सलीम वर्गा कोई होर खूबसूरत नहीं हो सकता, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वो खादिमा बेचारी की आखे, नौकराणी की आखे, हाथ जोड़ के कहने लगी, जहां पना सलीम वर्गा खूबसूरत खुदा ने बनाया ही नहीं, इस तो ज्यादा और किसी ने बनाया ही नहीं, ये सब तो ज्यादा खूबसूरत। अकबर कहता इसके नैन नक्श बड़े बाकमाल ने, खादमा हां च हां मिलांदी है, शहनशाह बादशाह सलामत मैं इस तरह का बच्चा देखा ही नहीं जेदे इस तरह के नैन नक्श आवन, मैं तो अज तक देखा ही नहीं। अकबर जो कुछ कहता उस तो अगे होके कहती है, जब इस तरह दस भी खूबियां अकबर दसदा है तो खादमा हां दे च हां मिला के गल वधा के बयान करती है। अकबर कहिंदे तू आगरे विच कल जावी सवेरे, कम ना करें, दिन भर तलाश करें, किसे घर विच कोई ऐसा बच्चा होवे जो सलीम नालों ज्यादा सोहना होवे, ज्यादा सुंदर होवे, मैं उसके मां बाप नू बच्चे नू माला माल कर देंगा, बहुत कुछ देंगा, तू तलाश कर। सूरज ढल दे, इशा दी नमाज तो पहले आ जावे। आ गई खादमा, सूरज ढल दे आ गई, इशा दी नमाज तो पहले आ गई। गोद दे चीथड़ियां दे लिपटिया होया एक बच्चा, अत्यंत करूप और लीरां दे लपेटे होया, साफ सुथरा भी इतना नहीं कीता सी। गोद दे बच्चा देख के अकबर कहिंदा, खादमा तेनू कहा सी कोई ऐसा बच्चा लेके आ जो मेरे सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत होवे। खादमा कहने लगी, जहां पना ले आई हां, ले आई हां, किथे है, ए देखो मेरी गोद, ये किसका बच्चा है? शहनशाह, ये मेरा बच्चा है, जे सच पूछें मेरी जान दी बख्शी करें, इस बच्चे दे सामने तेरा सलीम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जे मेरे को सच पूछें, जे मैनू माफ कर दें, की करा सारा आगरा घूमे, इस बच्चे नालो सोना मैनू एक भी नहीं दिखाई देता, सने मोह, अगर ना होवे तो अपने बच्चे च खूबियां दिखाई भी नहीं दे सकदियां, सने करके बच्चे पलदे ने, पर सारी जिंदगी मनुख सने दे च रह गया है, ये मनुख पशुआं तो उच्चा नहीं उठिया, सने ते पशुआं च भी होंदा है, बल्कि मनुख नालों ज्यादा होंदा है, ज्यादा होंदा है। जद कदी मनुख दा ए प्यार प्रेम दी सूरत इख्तियार करदा है, जिन्हों उर्दू परशियन विच इश्क कह देंदे ने, ये छोटे दी तरफ नहीं आउंदा, बराबरी दी तरफ आउंदा है, सने ते बच्चियां नाल हो सकदा है, प्रेम भरा नाल हो सकता है, मित्र नाल हो सकता है, पति नाल हो सकता है, पत्नी नाल हो सकता है, दोस्त नाल हो सकता है, भैन नाल हो सकता है, भरा नाल हो सकता है, ये बराबरी की तरफ होंदा है, इहदे च कोई छोटा वड्डा नहीं आउंदा, ते ये रिश्ता देण दा भी नहीं आउंदा, स्नेह दे ते सिर्फ देना ही देना है, ये भी मैं अर्ज़ करदे हां, बच्चे नूं ते देना ही देना है, मां ने समा भी देना है, सब कुछ देना है, दुध भी पिलाना है, उसकी सेवा भी करनी है, उन्हें बस्तर भी बदलने, स्नान भी कराना है, उन्हें दुध भी पिलाना है, सब कुछ करना है, स्नेह विच देना ही देना होता है, प्रेम विच मंग खत्म हो जाती है। इस वास्ते कहते हैं मनुखता शुरू ही प्रेम तो आती है, स्नेह तो नहीं आती, नहीं होंगे, स्नेह दे ग्रसे हुए मनुख देखे गए ने, अपने बच्चे ने ते पिछ ते हाथ लाया ते छाती ठर गई है, पर एक ओपरा बेगाना बच्चा आया, सीने नाल भी लगदा पे ते उन्हें चुके परे पे मारदा, ऐसा एक दफा मैं हजूर साहब दे देख के दंग रह गए कि बिरध माता बैठी एक मासूम बच्चा खेड़दा खेड़दा आया किधर उदी गोदे चाण बैठा उन्हें चुपके परे सुटिया बच्चा रोन लग पाया। उत्थे मैं इस गल नूं सोचिया मैं कह इसका अपना नहीं है इहदा पुत पोतरा नहीं होवेगा ओपरा विचारा आ गया वाकई ओपरा सी मां उसकी भज्जी हो आई ले गई रोन लग पाया अपने बच्चे विच औगुण भी होवन बड़े प्यारे लगते हैं दूधे जे बच्चे विच गुण भी होवन नहीं प्यारे लगते स्नेह की दृष्टि बड़ी सीमित होती है बहुत सीमित होती है बहुत सीमित होती है प्रेम थोड़ा महान होता है इहदे विच पवित्रता होती है इहदे विच कुरबानी का जज्बा होता है भरा भरा तो कुरबान हो सकता है पति पत्नी तो कुर्बान हो सकता है पत्नी पति तो कुर्बान हो सकती मित्र मित्र तो कुर्बान हो सकता है निछावर हो सकता है मंग कुछ भी नहीं है एक दूजे तो सदके हो सकते ने कुर्बान हो सकते ने। मैं हैरान हाँ भाई साहब भाई गुरुदास जैसी शख्सियत ने अपनी बाणी विच लैला मजनू का जिक्र किया सस्सी पुनू का जिक्र किया सोनी महिवाल का जिक्र किया हीर रांझे का जिक्र किया और ये वार दरबार साहब विच भी गाई जाती है। सब तो पहले अज तो 30-35 साल पहले बुजुर्ग रागी भाई हरि सिंह जद गा रहे सन तो मेरे कन्ना च पहुंच उठो ही फिर मैं सोचा इस मैं कि ये तो कोई भगत नहीं सन संत नहीं सन भाई गुरदास जैसे आलम फाजल ने इन्हों थां दे दिती है और जिस बाणी का कीर्तन करन दा सुभाग है उस बाणी उहदा कीर्तन हो सकदा है उहदा कीर्तन कीता जांदा है। फिर मैं थोड़ा जिहा इस दी गहराई च गया प्रेम ही मनुख नूं पवित्र करदा है ज्ञान नहीं पवित्र करदा। बड़े बड़े ज्ञानियां दे हिरदे मलीन रहणगे होंदे ने ज्ञान ते है ये पत्नी है पर प्रेम नहीं है ये ज्यादती कर सकता उस नाल ज्ञान ते है ये पति है पर प्रेम नहीं है ये उस नाल धोखेबाजी कर सकती है चलता है इतनी ते समझ है मेरा भरा है पर प्रेम नहीं है ये उस नाल भी छल कपट कर सकता है उस नाल भी धोखा कर सकता है। समझते सी विभीषण नु भी रावण मेरा भरा है पर सारे सीक्रेट दस देते सारे राज दस देते और घर घर देखा जा सकता है। मैं बहुत सारे सिलसिले ऐसे देखे ना भरा भरा दे मुकदमेबाजी भरा भरा बोलते ने भरा भरा दे दुश्मन समझते है मेरा भरा है प्रेम नहीं है। प्रेम नेड़े ले जांदा ज्ञान नेड़े नहीं ले जांदा। मैं फिर अर्ज करा कितनी गुरबाणी दे अर्थ बोध दा ज्ञान होवे प्रेम नहीं है मनुख दी सुरत शब्द दे नेड़े नहीं आएगी। बड़े बड़े ज्ञानियां दा शब्द नाल कोई मतलब भी नहीं है ये भी मैं अर्ज करते हैं। बड़े बड़े पुजारियां दा भावें सारी जिंदगी कृष्ण ते राम की पूजा करते रह जांदे ने यकीन जानो कृष्ण ते राम नाल कोई मतलब नहीं दूर का भी मतलब नहीं सिर्फ पुजारी ने सारे इतिहास का पता है तुसी कुछ भी पूछ लो ना श्री राम का सारा इतिहास दस देंगे श्री कृष्ण की सारी कथा दस देंगे भागवत दे अर्थ कर देंगे गीता दे अर्थ कर देंगे संबंध नहीं है गुरबाणी दे अर्थ कर देंगे बड़ी सोच ते समझ है धुआंधार तकरीर कर देंगे प्रेम नहीं है नेड़ता नहीं है नेड़े प्यार ले जांदा है नेड़े स्नेह ले जांदा है बच्चियां दे नेड़े स्नेह ले जांदा है प्यार गुरु दे नेड़े ले जा सकदा है भरा दे नेड़े ले जा सकदा है पत्नी दे नेड़े ले जा सकदा है पति दे नेड़े भैन दे नेड़े नहीं ते दूरी बनी रहेगी भरा विरह विच भी दूरी बनी रहेगी। ਤੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੁੱਟੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਖਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰ ਛੀਣ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਲਮ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਆਸ਼ਕੀ ਚੌਚੱਕੀ ਜਾਤੀ, ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹਿ ਕਰਦੀ ਰਾਤੀ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੋਸਤੀ ਉਹ ਜਾਤ ਕੋ ਜਾਤੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਵੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਭਾਗ, ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ। ਕਵੀ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਤਸੱਲੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਦਾਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਤਸਕੀਨ ਉਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਸਨੇ ਲੈਲਾ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਮਜਨੂੰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਚਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮਜਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਲਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅਸ਼ਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਮਗੋ ਅਜ਼ਹਾਲੇ ਲੈਲੀ, ਨਾ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਮਗੋ ਅਜ਼ਹਾਲੇ ਲੈਲੀ ਬਾਦਲੇ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਏ ਗੋਇਆ, ਕਿ ਸ਼ਰਾਏ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਮਜਨੂੰ ਮਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮੇ ਸਾਗਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਨੁੱਖ, ਇਤਨਾ ਭਾਵਕ ਮਨੁੱਖ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜੁਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜੁਣ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਰੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮਗੋ ਅਜ਼ਹਾਲੇ ਲੈ ਲਈ ਬਾਦਲੇ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਇਹ ਗੋਇਆ, ਕਿ ਸ਼ਰਾਏ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਮਜਨੂੰ ਮਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਤ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਉਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਉਮਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਬਹੁਤੇ ਦੇਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਰਧ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਆਖੇ ਪਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹੈ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਚੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਜ਼ੌਕ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਜ਼ਮ। ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਾ ਚ ਬੈਠੇ ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਤੇ ਜ਼ੌਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੌਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ, ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਜੈਸੇ ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ੌਕ, ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। अमीर मिनाई कहिंदे ने क्यों शहनशाह ने यह नजम जब तेरी सुननी है इस तों बाद साड़ी नजम फिर की मैंने रख दी कुछ भी नहीं। उस वक्त कागज के टुकड़े किए थे जमना छोड़ दी। मेरे बोल मेरे उस्ताद दे बोलों को छोटा कर देन ऐसे बोलों की लोड़ ही नहीं। मेरी नजम मेरे उस्ताद की नजम को छोटा कर दे मैनू ऐसी नजम की लोड़ भी नहीं। तुसी मेरे उस्ताद हो। कदी कदी इस तरह की श्रद्धा अपने उस्ताद नाल भी हो सकती है मां बाप नाल भी हो सकती है गुरु नाल हो सकती है। गुरु अवतार संत पुरशां नाल संबंध श्रद्धा नाल जुड़ता है। प्यार का सब तो उच्चा रूप है भगती ये भगवान दी होंगी और भक्ति भगत नो ही भगवान बना देंगी। जैसा भगवान है ऐसा ही भगत है। गुरबाणी कहती पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई। जिथे भगत है उत्थे वड्डे तो वड्डा पंडित सूर वीर महादानी ज्ञानी नहीं पहुंच सकता। और फिर भगत ते नारायण दे भगत ते भगवान दे कोई भेद रह नहीं जाता। ऐसा गुरबाणी बार बार कहती है ना में नारायण नहीं भेद राम कबीरे भेद ना भाई हूं कोई भेद नहीं रहा। भगती भगत नो भगवान बना देती है दो ही मिट जाती है। बूंद हूं अलग नहीं रह गई सागर हो गई है और खो गई। जिस दिन जमुना सागर विच खो जाती है गंगा खो जाती है फिर सागर विच गंगा लभनी औखी है सागर विच फिर सागर ही है। कबीर राम विच खो के राम ही हो गए। नामदेव प्रभु विच खो के प्रभु ही हो गए। ऐसा भक्ति कर देती है। भक्ति विच श्रद्धा की लेस ते होंदी है प्रेम की मात्रा ते होंदी है लेकिन फिर भी भक्ति शिखर ते। हुण मैं अर्ज करा स्नेह दे च सारे आउंदे ने हजारां च कोई एक कद मनुख प्रेम तक पहुंचदा लखां दे च फिर एक कद दे शरदा आउंदी है चक्कर च ना पैणा शरदा। गुरु ग्रंथ साहब दे सामने लोकी गप्पां मारी जांदे आउंदे ने बड़ियां वाहियात गल्लां भी करी जांदे आउंदे ने हैरानगी आउंदी है की शरदा है। एक दूजे दी पगां लैंदियां भी मैं देखियां ना कुछ भी नहीं। शरदा एक ऐसी अवस्था बना देंदी है वो मनुख बेअदबी नहीं कर सकता कतई ही नहीं करेगा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में इकबाल कहिंदा है अदब तो पहली गल है पर श्रद्धालु करदा है। लेकिन फिर जब ये भक्ति विच कदम रखता है तो भक्ति ऐसा है जैसे बूंद ने छलांग मारी है सागर हो गई है। इस भक्ति की रूपरेखा जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चित्री हुई है भगतां ने पेश की है धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडे सामने रखी है और कलगीधर पातशाह जो इसका खुलासा करते हैं मैं बाकी दे तीन दिनों विच तुहाडे सामने रखने की निमाणी कोशिश करांगा। हुण इत्थे समाप्ति करिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਟਿਕਾਉ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ। भरम भूले नर करच कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण। जन्म मरण तो नारायण रहत है ते जन्म मरण तो रहत होना है तो नारायण ते होना पड़ेगा। इस तो बिना नहीं है इस तो बिना यह चलता रहेगा यात्रा चलती रहेगी। साहिब रहमत करन इस दे बाकी पहलू जेड़े धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगमी बाणी ने वर्णन किए ने थोड़े सामने फिर रखांगे। हुण गुरु के कीर्तनिया पास एक महान शब्द सरवण करो आप आनंद साहब का पाठ से समाप्ति फतेह प्रवान करने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.